0: My name is Nozibele Kamganamayabo.
1: Don't hold back. Say it loud.
0: Thank you so much for tuning in. Welcome to Don't Hold Back.
1: A lot of people do that.
2: It's all about saying it loud.
0: Things would have been.
2: Nozibele gets everyone talking. Check out the award-winning podcast, Don't Hold Back.
3: जो उसकी ये बात अभी भी याद है कि उसने बोला था कि यार मेरी अम्मी को बोलना कि वो आपका बेटा मर गया है, अब उसका आप इंतजार ना कीजिएगा और मुझे यहीं पे छोड़ दो, आप जाओ मेरे लिए दुआ करो.
4: Currently, more people than ever are on the move worldwide in search of a better life.
3: तो जब ये वीडियोस मैंने देखी थी, मैं खुद रोने लग गया था कि यार ये क्या है.